0: काविल
1: मैं इच्छा गई नु मैं आग जाई नहीं सका मैं बहुत पानी प्यास लगता है
0: एक जी रुको मैं पानी लेके आना

0: अर्घा खांची ओबीसी सीमेंट देश को सीमेंट
1: शांति को आवाज रेडियो लुम।

0: का हुई?
1: मैं छह गई नु मैं आधा जाई नहीं सका मैं बहुत पानी प्यास लगता
0: एक जी रुको मैं पानी ले जाए ना

0: ओ ताला मुकुंद हमार छाई भगा के ले गिल बा।
1: ये जंगल काट के जाई के ना भाई।
2: ठीक बा।

0: वात्सल्य बुटवल क्लिनिक सुखनगर बुटवल सम्पर्क 9803364060।
1: यति बेला साँझको

0: स्वास्थ्य घर वात्सल्य बुटवल क्लिनिक सुखनगर बुटवल सम्पर्क 9803364660।
1: रेडियो लुम्बिनी 96.8 मेगा।